हर दिन हर रात तो अपनी कृपा से तेरे अपनी योग्यता से हमें भरता है प्रभु। केवल तू ही है, तू हमारे लिए योग्य है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तू हमें सुरक्षा देता है प्रभु, तू हमें साथ चलाता है, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू हमेशा हमारे साथ रहता है। यस, हम धन्यवाद करते सुन पर के लिए, यस आज के दिन के लिए, आज के धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, यस प्रभु तू सचमुच प्रभु। अब्राहम का मैं परमेश्वर।

यस प्रभु, आंसुओं की घाटियों में भी तो हाथ नहीं हमारा छोड़ेगा प्रभु। तू चिंता करता है प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, तेरे स्तुति के लिए प्रभु, तेरे उपकार के लिए धन्यवाद करते हैं।

यस प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, यस प्रभु तेरे उपकार के लिए धन्यवाद, तेरे कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, यस प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हम विश्वास करते परमेश्वर तेरे उपस्थिति के लिए, क्योंकि

महान खुदा है प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। यस प्रभु, तूने हमको तेरे स्वर्ग राज्य में कनेक्ट कर दिया, इसी में इसे धन्यवाद करते। यस प्रभु, तेरे स्वर्गदूतों ने हमें घेर के रखा है, इसे धन्यवाद करते। हमारी चिंता को तूने ले लिया, धन्यवाद। हम सब कुछ तेरे चरणों पे रखते प्रभु इस समय, क्योंकि तू हमारी चिंता करता है। तूने लाल समुद्र के रास्ते निकाले प्रभु। यस प्रभु, जो जो वायदा तूने अब्राहम के जीवन में बोया, आज भी तू हमारे जीवन में करने के लिए योग्य है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। यस प्रभु, तेरे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते। केवल तू ही धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु। हम धन्यवाद करते, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते, आपके सामर्थ के लिए धन्यवाद। पितर, हमें तूने हमको एक पवित्र आत्मा का सहायक दिए से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस प्रभु, हर प्रकार के लिए धन्यवाद करते। तूने हमें मौका दिया तेरे संगति में आने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हम धन्यवाद करते। सच्ची में प्रभु, हमने सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में दे दिया। तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत है प्रभु, तेरा नाम ऊंचा उठाते प्रभु। यस प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। तू हमारे जीवनों में बदल रहा है, हमारे हर एक, तूने वायदा दिया प्रभु हमें, हमें संतान बनाने के लिए। हमारे जीवन के हर मोड़ के ऊपर तू हमारे लिए काफी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसियाओं में, हमारे राज्यों में, हमारे देशों में, हमारे परिवार में, हर बंधन टूट जाए, हर बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। हम आज इस शाम के समय के लिए धन्यवाद करते, तेरा तेरा राज्य के लिए धन्यवाद करते। हमें तू चला रहे से धन्यवाद करते, हमारे परिस्थिति के ऊपर तू इलाज कर रहे से धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु। पिछली सारी बातें हमने तेरे सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु। ऐसी कोई बातें होगी प्रभु कि हमने तेरे सामने नहीं रखी, लेकिन आज तेरा वचन कहता है अपने आप को खाली कर दो और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जा। हमें भर दे प्रभु तेरे सामर्थ से, तेरे अभिषेक से हमें भर दे, तेरे लहू से हमें ढांप दे, तेरे सामर्थ से ढांप दे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, तू सब कुछ है हमारे लिए प्रभु। आज तक जो भी हमारे जीवन में हुआ, हमारे परिस्थिति में हुआ प्रभु, आज हम मांगते, तूने हमको शांति दी प्रभु, तूने हर बंधन से हमें आजाद किया प्रभु। यस प्रभु, जैसे वो बहन ने अपने पिता से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर में कब गवाही आएगी, मेरे घर में, मेरे परिवार में कब गवाही आएगी, मेरे जीवन में कब गवाही आएगी प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में तो तेरा समय बिताते हैं, स्तुति करने में समय बिताते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में जो बंधन है, रुकावट है, वो प्रभु से निकाल सकता है। आज हमारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते प्रभु, क्योंकि तू विश्वास योग्य पिता है, तू अद्भुत काम करने वाला पिता है, तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला पर पिता है प्रभु। आज हम मांगते हैं, हमें आशीर्वाद कर, हमारे लोगों को आशीर्वाद कर, हमारे कितनी बेटियां बांसी दबी हुई है उन्हें आजाद कर दे। आजादी केवल तेरे पास है, स्वतंत्रता केवल तेरे पास है प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, हम मांगते, हमारे ऐसे कितने हजार बेटी है ऐसी रुकी हुई है, उन सब बेटियों के जीवन में कार्य कर, तुझे प्रभु समझने के लिए मदद कर और मदद कर प्रभु, आशीर्वाद कर प्रभु। ऐसे प्रार्थना करते प्रभु, सहायता करना प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु, तू अद्भुत है प्रभु, तू पराक्रमी है। यस प्रभु, ऐसा हृदय तू चाहते हैं,
एक विश्वास योग्य हृदय प्रभु, हमारे मन में सारे बाहर बोझ लेकर आजमुख चल रहे ऐसे बोझों को तू निकाल दे रहा है यीशु के नाम से, ऐसे हम घोषित करते प्रभु। हर मुश्किल परिस्थिति को तू ठीक करने जा रहा है यीशु के नाम से, क्योंकि हम मिरेकल सीजन में प्रवेश कर रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी बातों को सुनते हैं प्रभु और विश्वास करते तो हमारे जीवनों में बहुत बड़े काम करने जा रहे, हमारे परिवार में शांति देने जा रहे, हमारे लोग चंगे होने जा रहे प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते आने वाले दिनों में हम वो सारे आशीर्वाद पाएंगे प्रभु। दुष्ट बातों को तूने निकाल दिया, गड़बड़ी को निकाल दिया, वेदर को तूने सही कर दिया, ऐसे धन्यवाद करते। भारत देश का ताबा, श्रीलंका का ताबा, इटालियन, फ्रांस, ऐसे सभी कंट्री उसको तेरे हाथ में देते प्रभु। हिट बढ़ रही है प्रभु, हम हिट को कम करने का आज्ञा मांगते हैं। जो वेदर चाहिए वो वेदर होने के लिए मदद करना प्रभु। ऐसे में प्रार्थना करते कई लोगों में प्रभु, जैसे दो दिन पहले या बारिश